0: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: लोक चाँचरी
2: लोक चाँचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
1: लोक चाँचरी।

0: लोक चाँचरी
1: लोक चाँचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
0: लोक चाँचरी।

उज्यालो रेडियो नेटवर्क देयाठीची एफएम स्टेशन व अनलाइन पाखे हलिङ्गको छक्को न प्रसारण जचुङ्गु सदस्य चिताई या नेपाबुखे प्राविधिक पासा संघर्ष विष्टलसी जी कुमार रंजितिया जोजलपा दक्ली नापमा मुबुख बागमती प्रदेश सभाया राजनीति नुकथया नैतिक संकटे राप्रपा पाखे मन्त्री जुपी सोमेश्वर पद मुक्त यात राप्रपा केन्द्र पाखे संसद सचिवालय पौर दर्ता यात गोङ्लु वैशाख 12 गते थुकेचना चौथासँग चिकेटुङका झिङनीमा सुकुम्बासित श्री ढुङ्कुगु संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा या धापु संवाद मार्फत क्वाटुको समाधान माले त ऊ पीड़ित कृषि लागु विकल्प विधमाग संघ या त भू ब्युपी बौद्धिक टेपु या त खोपरिङ रत्न पाखे छ्यापेल बागमती प्रदेश सभाया राजनीति नुकथया नैतिक संकटे लाग्दो सभाया मिघ सतुगु मुन्ज्या थौ पेताक निम्ति स्थगित यामल मुख्यमन्त्री जुम किरण थापा मगर विश्वास मत क्यात सहल यात्राका सतुगु मुन्ज्या सुचन्तिका स्थगित यामल मुख्यमन्त्री थापा यता विश्वास मत बित खासेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुने लाफुत्त चैव ख अदालतको छङ्गुदो यलया उच्च अदालत हेटौडा इजलास थापा मगर यात मुख्य मन्त्री देकुगु विरूद्ध तगुरीटे विपक्ष नामे कारण देखाउ आदेश बिउदो राप्रपा केन्द्र बागमती संसदीय दलीय नेता उद्धव थापाले चाहिँ सरकारले मोपी सोम मन्त्री गिरबहादुर तामाङ राजु विष्ट ओ राजेन्द्र प्रजापति पिन्त कारवाही याना पद मुक्त या त संसद सचिवालय पौदर तयागुदो थुजौको अवस्था मुख्यमन्त्री थापा या सरकार लेङ्का त्यता मागु बहुमत

आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एटी इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9857 3001।

0: समयको ख्याल राखौ। 7 बज्यो।
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कैद दरिया।